0: किशन गंदे सॉन्ग यार.
1: डांस करी पागल है क्या?
0: क्यों?
1: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग. ट्रोल.
0: बट व्हाई इज आइकॉनिक?
1: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं. कहे को पंगा लेने गए. छोड़ दे, आजकल जनता ना बहुत
0: डेंजरस हो गई. इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट. आई वाज इट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नाउ. यू आर गेटिंग मी.
1: यू गाइस वांट ऑडिशन? या ट्रोल हो जाएंगे. मत करो.

0: Killed it.
1: पागले क्या? ट्रोल हो जाएंगे. Yeah, not at all.
0: Dino, डाल दे.
2: ट्रोल हुए तो हो जाएगी.

0: टीवीएस कंपनी का विभिन्न मॉडल का मोटरसाइकिल र स्कूटर एंजल राइडर्स प्राली दुलेगौड़ा में टीवीएस कंपनी का बाइक र स्कूटर को खरीद बिक्री सब ब्रांड का पार्ट्स र सर्विसिंग गुणस्तरीय भरपर्दो र विश्वासिलो सेवा का लागि सम्झनुहोस् टीवीएस शोरूम एंड सर्विस सेंटर एंजल राइडर्स प्राली शुक्ला गंडकी 4 दुलेगौड़ा प्राइम बैंक संगे शुक्ला गंडकी एफएम को पारीपट्टी मोबाइल नंबर 98560309 र 97065220209
1: TVS साथ छ हाम्रो।